नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन द बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट देयर फॉर वेक अप रिमेंबर योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर धर्म दैट इज ह्यूमन लाइफ गॉड ऑलवेज इज देयर ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंस एवरीवेयर बट वी नीड टू फील एंड बी डिवोटी बी डिवाइन लाइफ सो दिस ग्लोरी ऑफ द गुरुदेव्स परंपरास योगीज ऋषिस एंड दे गाइडिंग अस प्रोटेक्टिंग अस एंड गिविंग ऑलवेज द डिवाइन पाथ टू अस सो वी आर वेरी हैप्पी वंस अगेन दैट वी आर हियर एंड वी आर थिंकिंग ऑलवेज टू विश गुरुजीज हेल्थ हेल्थ इज फर्स्ट वेल्थ Without health, without good health, is all wealth is not so. So good for human life. So health is necessary. Day and night, we are all devotees thinking about Vishwaguruji's health. And he, Vishwaguruji also thinking all of us and we are all in under the one tree and we are all praying under divine umbrella of Mahaprabhu ji this is divine umbrella bhakti sagar the ocean of the bhakti the ocean of the our bhakti what we call bhakti this divine name of God. So, pray always to Vishwaguruji's health and repeat mantra time to time, physically, mentally, spiritually, when you have time, repeat mantra for Vishwaguruji's health. We are all here because of Vishwaguruji. We are all here because the holy guruji we are all here because our parampara rishis gave us guidance and protection so we all need to think to Vishwaguruji's health and always repeat mantra pray to supreme cosmic light gurudev gave us the blessing and remove all disease and all disturbance which are they everywhere remove away and protect us so please sit comfortably we will sing three time om through the om we will pray to cosmic light to our parampara to give the protection and good health to Vishwaguruji so we will sing three time om deep inhale bayo sidha bayo teen bar om ro uchcharan karola babji re swaste re vaste to sidha be prane ho kyo ban kari pri na 11 swas le paro na om ro uchcharan karola po hang hate teen bar theek hai please do deep inhale

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, वेलकम। फॉर सम वन ऑफ यू इज गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम वन इज गुड इवनिंग एंड सम वन हैव लंच। So best is to say Hari Om. Welcome. Today will be the meditation on chakras. As a glimpse of the chakras, we always speak about chakras and body in detail.

देवपुरी सा महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

0: परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत सरभूषित महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, अन्य हमारे सभी संत वृंद एवं प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं,
1: आप ट्रांसलेट करो।
2: He's traveling in America, Australia, and everywhere, so I was hoping he will speak in English. So he gave, he greeted all of us who are currently here.
0: Param Pujya, Param Shraddhaya, Ananta Sri Bhushit, Shraddhaya Mahamalleshwar Swami Maheshwarananji Maharaj, jinki pavan kripa se इस आश्रम में, ओम आश्रम जॉर्डन में आप सबका आना हुआ, ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज जो आज चाहे अस्वस्थ हैं लेकिन उनकी जीवन की बहुत बड़ी साधना है जो आज हमें ओम आश्रम के रूप में दिखाई दे रही
2: है। सो आई विल मेक अ शॉर्ट ट्रांसलेशन बिकॉज ईच ऑफ दिस टाइटल्स of which our dear Mahamandaleshwarji is telling for Vishwa Guruji has a long translation. So he says that revered and respected Vishwa Guruji, Paramahansa Swami Maheshwarananji, who created this Om Ashram and who actually enabled all of us to come here in this place.
0: और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की ये साधना ये तपस्या एक दिन ऐसा रंग लाएगी आने वाले समय में विश्व भर के लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे।
2: एंड ही थिंक्स दैट दिस तपस्या दिस काइंड ऑफ साधना विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इन द फ्यूचर।
0: हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है।
2: इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु।
0: हमारे भाष्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं,
2: शंकराचार्य जी सेज इन हिज भाष्य इन हिज कमेंटरीज,
0: ईश्वर से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो गुरु है।
2: इफ समबडी इज ग्रेटर देन गॉड देन दिस इज गुरु।
0: ईश्वर को हमने किसी ने देखा नहीं है,
2: नोबडी सो गॉड,
0: गुरु जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं।
2: एंड गुरु इज इन फ्रंट ऑफ अस।
0: हमारे भाष्यकार कहते हैं कि दुनिया में तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं।
2: Our commentators of spiritual texts say there are three very rare things in this world.
0: First, सबसे पहली मानव का जन्म।
2: First is the being born as a human.
0: दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति।
2: Reaching the divine consciousness.
0: और तीसरा महापुरुषों का सत्संग।
2: And third is

0: कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, ये केवल मनुष्य को ही कर्म की स्वतंत्रता मिली है।
1: And we are free to do whatever things, whatever karmas we want to do. So intellect and karmas are something specially made for humans.
0: हमें सबको समय बहुत कम मिला है, इसी समय का हमें सदुपयोग करना है।
1: We got a very limited time and we have to do good in this time.
0: हमारे यहाँ वेद में कहा है, इह चेद वेदी असत्यमस्ति ना चेद यहा वेदिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु वचित्त धीरा प्रेत्य अस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। जिसका भावार्थ ये है कि इस मनुष्य जन्म को पाकर उस परम तत्व तक, उस परम सत्य तक पहुंच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
1: In Vedas it says that if you are born as a human and you have to reach to this enlightenment, otherwise will be a lot of suffering.
0: उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं, जैसे परम श्रद्धे स्वामी महेश्वरानंद जी ने लाखों हजारों लोगों को इस मार्ग पर लगाया और मार्ग दिखाया।
1: So to show this path, we have great saints, and one of that is our Gurudev Vishwa Guruji, who taught hundreds of thousands of us on the path how to realize oneself.
0: इसलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। वेद में कहा है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथते अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी हम लोग श्रद्धा गॉड पर, ईश्वर परमात्मा पर है, वैसी ही श्रद्धा हमें गुरु पर भी होनी चाहिए।
1: So in Vedas it said that as much as we believe in God, the same amount of belief we should have to our Guru.
0: इस आश्रम की परंपरा बहुत प्राचीन और बड़ी पवित्र परंपरा है। परम श्रद्धेय स्वामी अलकपुरी जी महाराज, स्वामी देवपुरी जी महाराज, दीप नारायण प्रभु जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज और श्रद्धेय विश्व गुरु जी महाराज।
1: So our parampara, our lineage is very holy and very old. It starts from Alakpuriji, continuing to Devpuriji, Mahaprabhuji, Holy Guruji, and now Vishwaguruji.
0: इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई है, ऐसे गुरु की शरण में आप आए हैं।
1: You are very lucky to get such a guru and be protected in his shelter.
0: इसलिए इस गुरु के माध्यम से ही आप उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा।
1: And because of that, you will be able to reach your destination, the final liberation, and you will be free.
0: हरि ओम तत्सत, हरि ओम
1: तत्सत। Short and sweet. Deep Narayan Bhagwan ki jai. Swami Atmanand ji Maharaj ki jai.
0: Swami Gyaneshwar Puri ji Maharaj ki jai.
1: This was, I think, it was like an introduction to the lecture, because I know that he speaks minimum for 3 hours. So this was very short and sweet. In India, there is a saying, Gagar Me Sagar. It means that in a small pot, you fill the whole ocean. So the essence of the human life, why we are here in Om Ashram, he just explained. So I will just continue a little bit, one, two shlokas from Ishavasya Upanishad. As you remember, Ishavasya Upanishad is first Upanishad from its, it can be found in Yajurveda. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti Om Ishavasyamidam Sarvam Yatkincha Jagatyam Jagatena Tyaktena Bhunjita Magridaha Kasya Svidhanam Kurvaneve karmani jiji vishechatam samaha evam tvai nanyate tosti na karma lipyate nare asurya namate loka andhena tamasavritaha tanste pretyabhi gacchanti ye ke chatmahano janaha ane jade kammana sojaviyo naina deva apnuvan purva marshat thadhavato anyena tyeti tishtatasmi napo matarishva dada

0: अब आप ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एक विद्यार्थी को अपने जीवन में प्राइमरी से लेकर के और एमए तक पढ़ाई करनी होती है, इसी प्रकार की पढ़ाई हमारे अध्यात्म की है, ज्ञान की है।
1: So in the same way, like the teaching starts from the first primary class going all the way to masters and PhD, the similarly the teaching is in adhyatma, in the spirituality.
0: Hamare adhyatma mein, religion mein, dharma mein, primary ki 10 पुस्तकें हैं।
1: In the first class of our in Hindu Dharma and religion and spirituality, there are 10 basic entrance books, primary books.
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दर्शकम ग्रस्त लक्षणम धर्म लक्षणम। पहला है धैर्य,
1: फर्स्ट इज
0: धृति, धृति मानी धारण करना,
1: सो टू टू एंड्यूरेंस।
0: जैसे अभी सिस्टर गा रही थी
1: पेशेंस,
0: कि हमारे साथ विश्व गुरु जी है, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, इसी को कहते हैं धीरति, पकड़।
1: So this is like when Vishwa Guruji is with us and we tolerate or we are ready to support or bear everything what is happening around him.
0: Guruji ने जो आपको मंत्र दिया है, उपदेश दिया है और अपना लक्ष्य बताया है।
1: So whatever the Vishwa Guruji told, Guruji gave you the mantra, the teachings and all what you have to do,
0: us par pakad rakhna,
1: you have to follow,
0: isko dhirti bolte hain,
1: this is called dhirti,
0: kshama,
1: endurance, patience.
0: Koi chhota aadmi agar koi galti kar jata hai to bade aadmi ko उसको क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई क्षमा भी मांग लेता है, कोई क्षमा कर लेता है। आई एम वेरी सॉरी।
1: सो फर्स्ट वन वॉज पेशेंस, द सेकंड वन इज टू फॉरगिव। सो व्हाटएवर हूएवर डज समथिंग, यू आइदर फॉरगिव टू देम और यू फॉरगिव टू अदर्स।
0: प्राइमरी की शिक्षा में जो वाइफ हस्बैंड है, पति पत्नी है, उनको साथ बैठ करके धर्म और भगवान का चिंतन करना चाहिए।
1: सो इन द फर्स्ट क्लास टू द हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड थिंक अबाउट गॉड।
0: धृति क्षमा दमोस्तेयम प्राइमरी में है, किसी भी वस्तु की, पैसे की, अन्न की, धन की चोरी नहीं करना, नहीं करता है तो वो उसमें पास हो रहा है।
1: द थर्ड स्टेप इज नो नॉट स्टील, व्हाटएवर मनी थिंग्स और समथिंग यू हैव दे शुड नॉट स्टील।
0: पवित्रता,
1: प्यूरिटी,
0: पवित्रता बहुत जरूरी है। मैं प्लेन में सफर करता हूँ तो केवल वहाँ ईयर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि वो लाते हैं, एक्सक्यूज मी, veg, non-veg, veg, non-veg.
1: So purity, like in an aeroplane, I take only water because, or air, because the people are offering veg, non-veg, and all these impure things.
0: वो पवित्र नहीं होता, शोध मैंने शुद्ध नहीं होता.
1: They are not pure, they are not clean.
0: तो धृति क्षमा दमयस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रहा. हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, जिससे कि हमारा नेचर ऊपर को बढ़े, हम उसमें ऊपर को आवें. ऐसा खान पान आहार व्यवहार हमको रखना चाहिए.
1: सो वी शुड ईट ड्रिंक थिंक लिसन और व्हाटएवर वी डू शुड बी इन अ सच अ वे दैट आवर लाइफ ग्रोस दैट वी आर गोइंग अपवर्ड्स इन द अपर ट्रैजेक्टरी.
0: हमारे बृद्धारणक उपनिषद में लिखा है आपका आहार शुद्ध होगा. आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध हो सत्वशुति, तो आप विश्व गुरु जी की कही हुई आध्यात्मिक बातों को संभाल सकोगे, पकड़ सकोगे, कैच कर सकोगे.
1: In Brihadaranyaka Upanishad it says if your deeds and food is clean, you will understand whatever Vishwa Guruji is trying to teach you.
0: Dhira vidya satyam akrodham dashakam grast lakshanam. Dhira vidya, buddhi, mind, isko buddhi ko सदुपयोग में लाना चाहिए. थी बनी बुद्धि. और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धि है, धी बनी बुद्धि है, माइंड, ये जो है ये शुद्ध खाने से पावरफुल हो जाती है.
1: सो आवर इंटेलेक्ट एंड माइंड शुड बी फॉर गुड. It should be pure and this happens from the food.
0: Vidya.
1: Knowledge.
0: Knowledge. जिसको knowledge कहते हैं वो विद्या. विद्या उसको कहते हैं जो आपको सुलझावे, उलझावे नहीं. सा विद्या या विमुक्त ही. जो आपको उलझावे नहीं, सुलझावे, उसका नाम है विद्या.
1: विद्या और नॉलेज इज दैट व्हाट फ्रीज यू, नॉट व्हाट बाइंड्स यू, व्हाट डजंट कवर यू और व्हाट मेक्स यू बाउंड, व्हाट मेक्स यू फ्री.
0: आप उलझे नहीं हैं, इस बात का प्रमाण ये होता है कि आपको मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, ईर्षा नहीं, ममता नहीं, और संसार के प्रति अट्रैक्शन नहीं आप.
1: So you are pure when you are not having all this attachment to this world, mad, moh, rag, dvesh, and so on, all this.
0: हमारे वेदों में सर्वप्रथम दो बात की शिक्षा दी गई है, सत्यम बदो धर्मम चरो. सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो.
1: In Vedas there are two teachings which are taught on the beginning, tell the truth and follow the dharma, follow your duty.
0: A course aapka primary ka 15 minute mein pura ho gaya.
1: So you're the first class of the spirituality is done in this 15 minutes.
0: Ek hi aadmi ke liye, ek hi sadhak ke liye, एक ही शिष्य के लिए, एक ही भक्ति के लिए फाउंडेशन में प्राइमरी बहुत जरूरी है. जो उसके घर से साधना शुरू होती है.
1: So for any sadhaka, any bhakta, any disciple, for any human being, all these primary things are necessary as a base.
0: उसके बाद में उसी साधक के लिए रास्ते अलग अलग नहीं है कि योग अलग है ज्ञान अलग है भक्ति अलग है ऐसा अलग नहीं है एक ही रोड के अलग अलग नाम
1: So there is only one road with the different names. Somebody is calling yoga, somebody is calling jnana, somebody is calling this or that. There are no different roads.
0: Bombay Surat Road, primary. Surat, Baroda, middle. Baroda, Ratlam, high. Ratlam,
2: He's telling the map of India.
0: India. एक ही रोड के जैसे बम्बई से सूरत बम्बई सूरत रोड नाम हो गया और जब सूरत पहुंचते हैं तो वहां से सूरत बड़ौदा रोड हो जाता
1: सो लाइक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बम्बई गोइंग टू सूरत दिस इज कॉल्ड बम्बई सूरत रोड व्हेन यू क्रॉस सूरत इज कॉल्ड सूरत Baroda Road, and then afterwards continue. So in the same way, all the spiritual paths are basically going to the same direction.
0: Middle ka arth hota hai yog marg. Jis marg ka naam, jitna ka marg ka naam yog hai, usko yog bolte.
1: The middle school is yog.
0: Yog mein aapke liye 8 pustak hai, jinko aapko dhyan de karke पढ़ के पास होना
1: सो इन द योगा देयर आर 8 बुक्स इन व्हिच यू हैव टू स्टडी एंड देन पास
0: यम नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पुस्तक यम यम का अर्थ होता है अपने को यमयति नियमयति दंडयति स्वान अपने को नियमित करना उस पुस्तक का नाम है नियम
1: द बुक व्हिच टेल्स अस हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स इज कॉल्ड नियम
0: नियम यम अपने को रोकना
1: यम इज द बुक व्हिच टेल्स अस हाउ टू स्टॉप आवरसेल्व्स
0: का अर्थ होता है जो योगा के लिए कहा हुआ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा वो नियम हो गया
1: सो नियम इज दिस फर्स्ट लाइन दैट व्हेन योर थिंकिंग स्टॉप्स व्हेन योर
0: नियम मींस कानून को पास पालन करना उसको धारण करना उसको अपने जीवन में लागू करना
1: टू फॉलो द लॉज एंड रूल्स टू पुट इट इन योर लाइफ दिस इज कॉल्ड नियम
0: यम नियम के बाद में आसन है
1: After that is
0: बॉडी को सेट करना बॉडी में जो पॉइंट है उन पॉइंटों को हाईलाइट करना और उसके साथ साथ में जो है जिसको प्राणायाम बोलते हैं हमारी बॉडी ईयर से चल रही है उस ईयर को शुद्ध रखना इसका नाम है प्राणायाम
1: so
0: और जो शरीर है उस बॉडी को फिट रखना यह है आसन
1: सो द थर्ड बुक आसन टेल्स अस हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हाउ टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन And the fourth book about pranayama is how to control the air and use it for the purification.
0: Asan se aapki body shuddh hoti hai. Aur isi prakar se pranayama se aapke andar 5 ear hai. Wo 5 ear shuddh hoke aur theek se delivery service karti hai aapki body ke liye. सामान की मटेरियल की सामान की
1: सो लाइक द आसनास प्यूरिफाई द बॉडी मेक इट क्लीन द सेम वे द प्राणायाम डज फॉर ऑल दिस 5 प्राणास 5 टाइप्स ऑफ एयर which then service our body properly.
0: उसके बाद में प्रत्याहार आता. प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है salt and sweet. समझ गए? प्रत्याहार मनी अपने अंदर चिंतन करना और बाहर से कॉन्टेक्ट सब खत्म करना, इसको प्रत्याहार बोलते.
1: सो प्रत्याहार इज टू विद्रॉ वन सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक वन सेल्फ इनसाइड.
0: अभी हमारे अध्यात्म में इंडिया में लोग योगा का बहुत प्रचार करते हैं और दो ही बात बताते हैं, आसन और प्राणायाम. फाउंडेशन में जो यम नियम है वो नहीं बताते, दो ही बात बताते हैं, आसन प्राणायाम. फिजिकली बॉडी के लिए बहुत सरल होता है.
1: सो nowadays इन द वर्ल्ड इट्स वेरी फेमस द योगा. It's only mentioning just asanas and pranayamas, what is good for the body. But yama and niyama, the rules of outer and inner behavior that nobody tells.
0: Asan pranayam ke baad pratyahar hona chahiye. Lekin aaj ke yogi jo hai, vyapar shuru kar dete.
1: So after the asana and pranayam, pratyahara should come, but people started business before pratyahara.
0: Ye mera toothpaste hai, ye mera burush hai.

0: मेरी वैसलीन है, ये मेरे स्किन क्रीम माई
1: सो दिस इज माय टूथपेस्ट, दिस इज माय स्किन क्लीनर,
0: ये मेरा च्यवनप्राश है, ये मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा वो है। तो प्रत्याहार जहाँ शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए था, वहाँ पर व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, विस्तार हो गया।
1: So,
0: इसलिए वो योगा के लिए अच्छा नहीं है।
1: So instead of pratyahar, which means coming inside, is vyapar, which means expand. So this is not good for yoga.
2: गुरुजी, ये बैठा
0: ना। बाबा रामदेव जी। कहाँ? अच्छा वो हमारा चेला है वो। इनको पता है सबको। तो उसमें ये है। अब इसके बाद में होता है धारणा। धारणा जो स्वयं का जजमेंट है, स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं का निर्णय है, स्वयं की कैपेसिटी है और स्वयं की घोषणा है, उसको धारणा बोलते हैं।
1: सो धारणा इज द नेक्स्ट बुक, फिफ्थ बुक, विच सेज अबाउट इट्स आवर ओन कैपेसिटी, आवर ओन ओन कैपेबिलिटी एंड सो ऑन।
0: अभी आप देख लीजिए धारणा किसको बोलते हैं। ये मेरा संगीत वाला है। धारणा किसको बोलते हैं? ये मेरा संगीत वाला। ओ भाई,
1: सो यू लुक
0: संन्यास लेगा?
1: मींस धारणा
2: नहीं
0: लेगा। नो धारणा।
1: धारणा मींस एक्चुअली आल्सो कंसंट्रेशन। सो यू लुक एट माय द ढोलक पर्सन इफ ही वांट्स टू हैव संन्यासा। सो ही सेड नो थैंक यू।
0: हमको एक व्यक्ति ने कहा, आपने अच्छा किया, आपने अपनी 21 पीढ़ी पार कर ली, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत महान हैं।
1: Somebody told me, you are a great person, you cleaned and purified and you cross over 21 of your family lineage, all 21 generations crossed over this sansara, you are a great person.
0: हमने अपनी चादर उसके गले में डाली, तुम भी अपनी परंपरा को, पीढ़ी को पार करो, तुम भी सन्यास ले लो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो नो नो।
1: So then I said, okay, I took my shawl and I put around that person's neck and said, okay, now you become a sannyasi, you also take your 21 generations across this world. I said, no, no, no, no, no, thank you so much.
0: तो इसका मतलब है कि वो धारणा में नहीं है, उसकी धारणा अच्छी नहीं है, उसका लाइफ जजमेंट या लाइफ जो उसकी प्राप्ति है वो पूरी नहीं है।
1: सो डिजायर्स इन दिस लाइफ दे आर नॉट फुलफिल्ड फॉर दिस पर्सन एंड हिज कंसंट्रेशन टुवर्ड्स गॉड, डेडिकेशन इज नॉट देयर।
0: ध्यान, इसके बाद में ध्यान आता है। ध्यान में जो है, ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: Before meditation, you need some knowledge.
0: एक जो है वो ध्यान बिजनेस बन गया है।
1: And this knowledge became now business.
0: आप वहाँ गए, थोड़ी देर आपको घंटा दो घंटा बैठाया और बड़ी बड़ी बातें की, तो वो एक बिजनेस है। लेकिन ध्यान से पहले ज्ञान चाहिए।
1: So like this now, these meditation classes and so on, they are there just to make, it's like a type of business. But before you actually start with meditation, you have to have some knowledge.
0: अच्छा ये बताइए, मैंने आपको आपको देना है मनी, तो मनी 10 रुपए लोगे कि 50 लोगे कि 100 लोगे कि 500 लोग 500 का नोट लोगे, कौन सा लोगे? जब मैं कहूँगा कि मेरे से मनी ले लो, मनी रखा है, तो कौन सा नोट लोगे?
1: सो इफ आई टेल यू प्लीज टेक द मनी फ्रॉम मी एंड देन आई गिव यू 5, 10, 20, 50, 100 or 500 रुपीज, विच वन यू विल टेक?
0: अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इतने में से कौन सा नोट लेंगे आप?
1: From all of
0: 500 का ना, 500 का।
1: From all of this, you will take 500
0: का, ठीक है ना?
2: 2000
0: का बंद कर दिया मोदी ने यार, 2000 दे दे। 200 का नहीं। कैसी बात कर रहा है? अगर हम आपको दे रहे हैं तो 500 का लेगा ना आदमी, नहीं लेगा क्या?
1: Yes. So if I give you 500 rupees, you will take 500 rupees, you will take less.
0: सभी अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो
1: Now we are like
0: again hand. Yes.
1: Now we are a little bit ashamed, but when the opportunity comes, we will definitely take 500 rupees.
0: ध्यान उसी का होता है जिसकी कीमत आपके दृष्टि में ज्यादा होती
1: है. So you can do ध्यान, ध्यान which when you value something really much.
0: यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्तोपि दुःखेन गुरुणा न विचालयेत. तो जिसकी आपकी दृष्टि में महिमा होती है, कीमत होती है, महत्व होता है, उसी को आदमी याद करता है.
1: So whatever is valuable in your eyes, whatever you think is good, whatever you think is best, that actually you concentrate on.
0: आपका आपके जीवन में आपके बीवी बच्चे परिवार का महत्व है. अगर आप 2 घंटा ध्यान केंद्र में रहोगे भी और वो आपको कुछ बताएगा भी, तो थोड़ी देर में वहाँ से बाहर आने के बाद आपका ध्यान अपने बीवी बच्चों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा है.
1: Like if you have children, wife or husband, and then you go for meditation, even in this, after the meditation, you will continue thinking, or during the meditation, you will continue thinking on them, because they are something valuable in your life. You
0: मनुष्य के जीवन में परिवार होता, संसार होता, लेकिन मनुष्य का ज्यादा ध्यान गोल्ड पे होता.
1: There is a family.
0: क्योंकि गोल्ड कीमती होता है, महत्व का होता है, उपयोगी होता है.
1: The for any human, the life, the family and the samsara, this world is valuable, but the gold is most valuable.
0: इसी प्रकार से जो है समाधि आती है, समाधि. हमारे किसी सृष्टि के सिस्टर का नाम भी समाधि था, दिल्ली में. हाँ, दिल्ली में समाधि सिस्टर है. समाधि का अर्थ होता है कि ना आप संसार में हैं, ना आप शरीर में आपका कोई कॉन्टैक्ट है, अट्रैक्शन कॉन्टैक्ट वहाँ कहीं पर नहीं है. केवल केवल ओनली आपका अपने पर ध्यान है, उसको समाधि बोलते.
1: समाधि इज व्हेन यू फील ओनली योरसेल्फ, देयर इज नो कनेक्शन विद योर बॉडी, देयर इज नो कनेक्शन विद दिस वर्ल्ड, यू हैव कनेक्शन ओनली विद योरसेल्फ.
0: हमारे विश्व गुरु जी के ध्यान में, ध्यान शिक्षण में 2 प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प.
1: There are 2 types of samadhis, sarvikalp and nirvikalp.
0: Sabikalp samadhi usko kehte hain, jahan par sadhak pakka hai. Aur usko upar uthane ka sadhan bhi sachcha hai. Aur jahan ki uska god, jo usko pana hai, wo bhi uski samajh mein hai, isko bolte hain sabikalp samadhi.
1: So the Savikalp Samadhi is when there is a God who he understands and there is his desires, what he wants, so with some desire or with some aim.
0: इसके बाद में निर्विकल्प समाधि है, जहाँ पर न तो शिष्य रहता है, न गुरु रहता है, ये दोनों गॉड में मिलकर के गॉड हो जाते हैं. Aham Brahmasmi.
1: So in Nirvikalpa, there is neither disciple, there is no guru. They both merge into the God. Aham Brahmasmi, I am Brahma.
0: ये हो गई. अब 12वीं क्लास की, 16वीं क्लास तक भाग तो नहीं जाओगे.
1: So this is 12th class.
0: अब 12वीं क्लास क्या है? भक्ति, जिसको हम भक्ति कहते हैं.
1: So 12th class is भक्ति.
0: भक्ति में, भक्ति के कोर्स में 9 पुस्तकें हैं.
1: In the course of bhakti, there are 9 books.
0: 9 pustakes. बात सुनना तो केवल विश्व

0: Maran Bhakti is when you remember only God and Guru, nothing else. There is nothing except God and Guru.
1: Surrender. चरणों में झुक जाना, चरणों में समर्पित हो जाना, चरणों में आश्रय पाना, ये पाद सेवा भक्ति है.
0: So these are the different ways how to surrender yourself to the lotus feet of Master.
1: पूजा पूज्य समझो तो गुरु गोविंद को, पूजा करो तो गुरु गोविंद की, दूसरे की किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे मनुष्य को भटकने की संभावना होती है.
0: So if you do some puja, if you do some ceremony, do the ceremony for God and Guru. If you follow somebody, follow Guru and God, because otherwise you can get lost.
1: अपनी आवश्यकता और गुरु गोविंद का महत्व समझ करके जब वंदना की जाती है, स्तुति है, वंदना है, वंदन है, उसको वंदना भक्ति बोलते हैं.
0: When we start glorifying the importance of Guru and God, then this is called Vandana. This next
1: Dasya, Sevak, Shishya, usko Dasya Bhakti kaha gaya hai.
0: Next one is serving, to serve the Guru and God.
1: Dash, apna istitva, apna mahatva, अपना अहम आकार प्रकार स्वरूप मिटा करके गुरु में समाहित हो जाना उनकी सेवा में, उसको दास बोलते हैं.
0: दास और सर्वेंट इज व्हेन यू रिनाउंस ऑल ऑफ योर आई ऑल ऑफ योर इगोइज्म एंड देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द गुरु.
1: जब आपका मन शुद्ध हो जाता है और गुरु गोविंद को विश्वास हो जाता है, तो उस समय पर गॉड भगवान गुरु आपको अपना मानते हैं और आपके साथ मित्रता का विरोध व्यवहार करते हैं, उसको सखा भक्ति बोलते हैं.
0: सखा भक्ति इज द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू बिलीव एंड ट्रस्ट योर गुरु सो मच दैट ही आल्सो कैन बिकम लाइक योर फ्रेंड.
1: हमारे सनातन धर्म वैदिक मार्ग भक्ति मार्ग में धीरे धीरे धीरे धीरे अर्जुन जब कृष्ण के नज़दीक गए तो भगवान ने उनको फिर दास नहीं रहने दिया, सेवक नहीं रहने दिया, उनको सखा बना दिया. सखा मित्र, फ्रेंड.
0: When Arjun was with Krishna, he didn't, after some time, he stopped being his servant. He's toying being his sevak, he became his friend.
1: इसके बाद में आत्मनिवेदन भक्ति आती है. बोलो महाराज जी, अब मैं आपके साथ ही कल सुबेरे चला चलूंगा. चलो इसकी तरफ से मैंने बोल दिया. कहते आत्मनिवेदन.
0: Atmanivedan is when you say, I'm going with you tomorrow morning, I will go with you wherever you want.
1: Oh, Atmanivedan hai. Atmani hamara ye nivedan hai ki hum aapke yahan admission chahte hain, entry chahte hain, aur ab hum usi condition mein rehna chahte hain jis condition mein hamare Gobind rehte hain, God rehte hain.
0: So it's a request of the soul that I want to live in that condition, I want to live in such a way like a God is living.
1: Iske baad mein final MA ki pariksha hoti hai ek hi aadmi ke liye. Wo kya hai? Gyan ki bhumika.
0: So the MA, the master degree, is the index of knowledge, is the last one. Or introduction to knowledge.
1: उसमें सात पुस्तकें हैं. उसमें सात पुस्तकें विद्यमान की गई.
0: Seven books
1: उसमें है. पहली बुक्स क्या है? सुभिच्छा. क्या है भैया? सुभिच्छा क्या है? बोलो.

0: गुरु जी, अब मैं आपके पास ही रहूंगा, रह लेना हम काम आना
1: First book is Sva Icha or the own desire, and you say, Gurudev, I want to live with you.
0: Acha, ab
2: dusra. And then he said, most welcome. I'm not stopping you.
3: I have no problem. Come.
0: आपको तो हम एक मीडिया बना रहे हैं. अच्छा, अब बोलो गुरुजी.
1: गुरुजी,
0: मेरे विचार आपके विचारों से मिल रहे, ले ले संन्यास.
1: The second one is, oh Guruji, I think the same like you, and Guruji says, okay, then take sannyasa.
0: जब साधक शिष्य का विचार गुरु से मिलता है, उसको कहते हैं विचारणा. उसको क्या बोलते हैं?
1: विचारणा.
0: उसको विचारणा बोलते हैं.
1: Vicharna means thinking. It's like when your thoughts and guru's thoughts are equal. You're thinking like your guru.
0: Tan Mansa. Iske baad mein jo hai, pustak hai, Tan Mansa. Guru se jab vichar milta hai, to jaise badi tanki mein se, pipe mein se paani aakar ghar ki choti tanki mein aane lagta hai, aise guru ka gyan shishya mein aane lagta hai. Isliye usko Tan Mansa bolte hain. Any connection, badi tanki se choti tanki mein connection.
1: So the next one is Tan Mansa, when the guru, the knowledge of the guru slowly starts to be transferred to the small pot of shishya, of disciple.
0: Sattvapatti. Ab chaturthi jo hai, gyan bhumi suvichha syat, prathama samudhairta, vicharana dutiya syat, tritiya tanumanusa, sattvapatti chaturthi syat, पंचमासन से आत्मका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी त्रियगास्मृतम. तो चौथी जो भूमिका है, चौथी पुस्तक है, उसके कारण गुरु में और शिष्य में जो है एकता, एक आकार, एक अभिव्यक्ति और एक विचारधारा बन जाती, उसको सत्वापत्ति बोलते.
1: Sattvapatti is the next step when in guru and disciple there is no difference in their thinking and everything.
0: Padartha bhavani kehte hain. Padartha bhavani. Jaise aapko chai yaad hi nahi aave, coffee yaad hi nahi aave, chutney yaad hi nahi aave, rasgulla yaad hi nahi aave, ice cream, phir 15-15 injection.
1: The next step is when you even don't remember, you know, neither any sweets or anything, any food you like. There is nothing there.
0: Padartha bhavani ka arth ye hai ki aapke samne stone ho aur aapke paas mein jo hai gold ho, is dono ko aap barabar samjhe, isko padartha bhavani bolte hain.
1: Padartha abhav, the detachment from the anything, is like you can have a stone or you can have a gold, for you this is equal.
0: नहीं, पहले असंशक्ति. असंशक्ति ये है, असंशक्ति इसको कहते हैं कि कभी कोई रिलेशन में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी है, इनमें आप गुरु को छोड़कर इनमें आपके मन का नहीं जाना, उसको बोलते हैं असंशक्ति.
1: Asan Shakti is when you don't think and then you go back to your family, to your brothers, sisters, wife, parents and children.
0: Ab to hamara ek hi nara, na hum kisi ke, na koi hamara.
1: There is only one thing I know, there is nobody of mine and I am nobody's.
0: पदार्था भावनी, जहाँ सोना मिट्टी बराबर लगे, कोई भी उपलब्धि, कोई भी प्राप्ति, संसार संबंधी जो अपने को प्रभावित नहीं करती हो, उसको शास्त्र ने असंशक्ति कहा.
1: So only after you get detached for your family and so on, you can come to this detachment from the things from this world, like gold and all these things.
0: हमारे भागवत में श्रृंगी ने साफ दिया था परीक्षित को तक्षक काटेगा और लास्ट में तक्षक आया फणा उठा करके लेकिन परीक्षित डरा नहीं. आप डरोगे जब कोई आएगा ईयर वो क्या ना बोलते उसको
1: सांप सांप स्नेक
0: स्नेक वो आएगा तो आप बैठे रहोगे कि भाग जाओगे.
1: So like in Bhagavata there is this curse of king.
0: इसको पदार्था भाव नहीं बोलते हैं कि किसी से भी हमको खतरा महसूस नहीं हो डरने लगे. और कृष्ण भगवान ने कहा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचेनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मार्ग. आपको शस्त्र नहीं काट सकता पवन नहीं उड़ा सकता पानी आपको जो है भिगा नहीं सकता है हवा आपको उड़ा नहीं सकती है. ऐसा आपका स्वरूप है उसमें स्थित होने का नाम है पदार्थाभावनी. उन पदार्थों का आप पर कोई प्रभाव नहीं उसको पदार्थाभावनी बोलते हैं.
1: So this is that book Padarthabhav. There is no fear of snakes. There is no fear of death. There is no fear that the fire will burn you. You will drown in the water. That anything will happen with any element. So this is the highest form.
0: Duriya avastha usko kehte hain jab aapke charon taraf samagri padi ho, vastu padi ho, sab kuch jitna bhi sansar mein wo pada hua ho. और आपकी उसके प्रति कोई आप में कोई अट्रैक्शन या कोई वृत्ति या कोई वर्क आप उसमें नहीं करते हो तो उसको तुरिया अवस्था बोलते हैं.
1: एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज तुरिया अवस्था द प्लेस और द माइंड स्टेट व्हेन यू हैव एनीथिंग अराउंड यू एंड देन यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क इन दैट इट डजंट अट्रैक्ट.
0: इस प्रकार से जिसने स्टार्ट किया गुरु जी से इस प्रकार से उस व्यक्ति को सारी क्लासें और सारी पुस्तकें तैयार करके लाइफ में पास होना चाहिए और गुरु गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए गुरु गोविंद को विश्वास में लाना चाहिए और गुरु गोविंद को ये एहसास कराना चाहिए कि आपने जो हमारे साथ मेहनत की वर्क की वो हमने सफल कर दिया.
1: सो इन आवर लाइफ्स from the starting point we have to pass all these tests and we have to convince the guru and the god that we did and then whatever you invented it as whatever you effort you put in us it was successful. So we passed all these exams. This acharya ji is telling to us that we should success we passed and we should successfully pass all Vishwaguruji's tests or effort what he gave. We should fulfill all his wishes.
0: Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti Shanti.
1: Chidip Narayan Bhagwan Ki Jai Devadi Dev Deveshwar Mahadeva Ki Jai Indudaran Samrat Smarav Nanji Bhagwan Ki Jai Rajguru Mahamandaleshwar Acharya Mahamandaleshwar Shokanand Bharatiji Maharaj Ki Jai.

आवर। दया धर्म का मूल है पाप मूल अपमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में है प्राण। दया मींस मर्सी, दया धर्म का मूल है। द दया इज मर्सी इज द रूट्स ऑफ द धर्मास। पाप मूल अपमान, द पाप मींस सिन, द सिंस दे आर गिविंग अनहैप्पीनेस टू पीपल, एंड द सिंस मीन्स टू किल समवन, टू गिव समवन द बैड वर्ड्स और टॉक द समवन लाइक अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज गिविंग अनहैप्पीनेस एंड इट क्रिएटिंग सिन। इट्स वेरी डीप डीप डीप स्क्रिप्चर्स नॉलेज, इट इज वी रीडिंग मोर देन 25 ईयर्स, बट स्टिल their roots so deeply go, each and every words that explanation is given there, what is seen anywhere, if some ants dying from us, by us, the way we walk, if ants died, also there comes sins. But somebody killing two animals, what do you think? How much big sin that? So for that call, paap mool abhiman hai, तुलसी दया ना छोड़िए, यू नो तुलसीदास जी, दैट इज हिज पोएम दिस, रामायण, हु रॉट द ग्लोरी ऑफ द रामा, द तुलसीदास जी। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में है प्राण, एज लॉन्ग द प्राणास इन अवर हार्ट, एज लॉन्ग वी आर ब्रीथिंग, डोंट गिव अप द मर्सी। और तुलसी क्या करसी, तुलसी दैट तुलसीदास जी, तुलसी तुलसी क्या करे तुलसी बन का घास, कृपा भई गुरुदेव की तो बन गया तुलसी दास। तुलसीदास जी, एवरीबॉडी रिस्पेक्टिंग एंड व्हाट कॉल वर्शिपिंग टू तुलसीदास जी, ओ तुलसीदास जी आर सो ग्रेट सो ग्रेट। सो ही रिप्लाइड, आई एम द ग्रास ऑफ द आवर फील्ड और गार्डन, नो यू नो तुलसी वन तुलसी प्लांट, तुलसी दैट आई एम सिमिलर लाइक दिस ग्रास, बट ब्लेसिंग ऑफ द गुरुदेव, blessing of the Rama, blessing of the Hanuman, they give us me blessing that ban gaya tulsi das. Das means slaver of the God. Mahaprabhu ji, one holy guru ji bhajan, dasan ka das prabhu maye banavo, hey prabhu, leave me your slaver, slaver, give me blessing, give me blessing, give me blessing. So for that human life, it is not normal life. Human life is not like only eat and drink and live and sleep and live in this world and out enjoying. This is not sufficient. So for that human life, the yogis, the gurus, they give us, the gods give us the divine scriptures and divine God names, and gurus always guiding to devotees to divine path that you came this world. So get self-realization or inner peace, harmony, peace, tolerance and understanding between the family, between the culture, between the religions and between the nation. This is slogan of Vishwa Guruji. So that we are very happy and we are very, very thankful to always our Parampara Rishis that they gave us that huge, huge God glory name. In the India, one great, great goddess. Always I was thinking, you know, not only in India, but mostly all everywhere around the world, only mothers, they are more devotees to God than men. Why this is happening? Every satsang you go, there are majority of the mother or sisters, and what called brother or the fathers, or they are less quantity. Because the mothers and sisters, they are more the toward thinking to God. And in similarly in India, that by Mira, the divine bhakti she had, and she was especially in Rajasthan, she born in Rajasthan,

She was great, great, great devotee of God. And she write one bhajan, a divine bhajan. You know that she, how deeply she was, this wrought the bhajan, and how deep was she was feeling that bhajan toward God. So great. Payaji mene Ram Ratan Dhan Paya. Payaji paya mene Ram Ratan Dhan Paya. Jagat mein sab, jagat mein lage sab phika. पाया जी मैंने राम रतन धन पाया मेरे सतगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया जन्म जन्म की पूंजी पाई मितिया जगत में सब खोवाया। ओ गुरुदेव सी वॉज प्लानिंग दिस भजन पाया जी पाया मैंने राम रतन द गॉड ग्लोरी लिंट माइंड ज्वेलरी गॉड नेम इज लाइक ज्वेलरी पाया जी पाया मैंने राम रतन धन पाया मेरे सतगुरु दी अमोलक वस्तु कर कृपा अपनाया माय गुरु माय गुरुदेव गेव दैट इज द यू कैन नॉट कंपेयर इन द प्राइज आउट ऑफ प्राइज हायर देयर नो प्राइज इट प्राइजलेस वन थिंग इज देयर नो प्राइज दैट मे बी नो मटेरियल बट यू कैन नॉट गिव प्राइज मिलियन ट्रिलियन और बिलियंस मनी यू इफ यू गिव यू कैन नॉट गेट सो मीराबाई सेड that I got that name, you cannot buy that glory. Janam janam ki punji pai, life and life and life, punji means the jewelry or wealth. Jagat mithya jagat mein sab khovaya, these worldly materials, it is like only just few days or 50 years or 75 year or 80 year or 100 years, and it will remain here. आया सो सब जाएगा क्या राजा रंग बजीर कोई सड़ सिंहासन कोई बांध जंजीर हो ऑल विल गो एंड दिस मटेरियल थिंग्स विल रिमेन हियर एज लाइक बिफोर पीपल वाज लिविंग समवन हियर बिफोर अस नाउ वी आर हियर एंड आफ्टर सम इयर्स समबडी विल हियर एंड वी विल बी समवेयर फ्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शंस सो दैट मीरा वाज सेड कर कृपा अपनाया जन्म जन्म की पूंजी पाई मेरे सतगुरु दी अमोलक वस्तु खाया ना खूटे चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवाया दे जे मदर्स दे नो ऑलवेज सिंगिंग दिस भजन्स खाया ना खूटे एज मच यू कैन ईट दिस गॉड भजन और रीड और राइट और सिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेवर डिक्रीजिंग गॉड नेम नेवर डिक्रीजिंग गॉड नेम ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज जन्म जन्म की पूंजी पाई लाइफ एंड लाइफ ज्वेलरी आई गॉट दिस इन दिस लाइफ खाया ना खूटे चोर ना लूटे द थीफ कैन नॉट स्टील द गॉड नेम द मटेरियल थिंग्स दे कैन स्टील एनीवन बट नॉलेज विच यू हैव डेवलप्ड इनसाइड द कॉन्शियसनेस द सुप्रीम कॉन्शियसनेस विद इन द यू दिस सुप्रीम नॉलेज गॉड नेम और गॉड ज्वेलरी दैट विद इन यू एंड इट विल गाइड एंड प्रोटेक्ट एंड लीड अस इन द डिवाइन पाथ that Mahaprabhu is in the golden, what called the golden text written there. If you lead your life according to the ethical principle, you can fulfill your dharma and you fulfill your dharma and it will lead you in the God direction, divine direction. Every creature have the divine light. Love all creatures. If not more, then at least as much as yourself. That is divine sense. This is what I'm talking or what I'm preaching. This all from this Mahayogis, Gurus, Paramparas, Rishis, divine names, divine jewelries. Satki Nav Kevatiya Satguru. Bhaiya, theek hai? Satki Nav Kevatiya Satguru Bhavashindu Tiraya. Bhavasindhu Tiraya. That called Satki Nav, the truth boat. And Satguru is a Gurudev, is a rolling boat. Bhavasindhu Tiraya, he lead me this across this ocean. Ke bhai Meera Prabhu Giridhar Nagar, Ke bhai Meera Prabhu Giridhar Nagar, Haras Haras Karam, yes, Gaya. Oh Gurudev, you are divine, you are great, you are the my prana haras haras kara haras means happy so happy she was so happy she happy and she was singing the bhajans day and night and kar kripa moye bhav sindhu tiraya girdhar nagar girdhar means

दीप नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट therefore

ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्य

जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: विद्दू and when is it thing everything is have done then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da di nam ta
1: Shiva koji pleše
0: da gdi gdi blag bi kada ga gri gri grad da do da di ka bdai ta re ge ge ge ge एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र

0: भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी दैट इज कॉल्ड सत संग The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sitting like this, say, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all to this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai. Janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind. Taki, the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo hi satya kahal ja gaya hai. तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग सो वेरी नाइस सत्संग तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and when my country there, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. स्वामी जी है महेश्वरानंद है, तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ, पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल दे बट इट नो आई हैव डन एंड वाट डू यू वाट विल डू एंड सो माई डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास यस माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना और होना ही चाहिए नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है मनुष्य ही है। अब किसने वो नाम दिया उसका वो नाम दिया उसका वो नाम दिया है सबका नाम दिया कि किसका नाम है कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य है। तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं आप देख लेना। हाँ ठीक है आप मेघवाल हो गरग से हो जो भी हैं सभी हैं वो है ही है लेकिन है वो मेरा मनुष्य मेरे देश का तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ Hein? Qui n'est? Premanandji n'est? Ah, Premanandji quand même. Et Premanandji? Achat, Premanandji, non, mais ça, c'est qu'un prém. C'est qu'un nom, c'est prém. Prém qui... Bolo. Ah, तो वो इनका है प्रेमानंद जी का प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मगा या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके लेकिन आप देखेंगे इसको देखेंगे कितना रर रर रर इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं कितने वृक्ष है अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में मैं गया था कहीं तो ये भी आए एक बार आए दो गए फिर वापस आए और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है प्रेम की बोलो श्रीदीप नारायण भगवान की जय
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री माधवानंद जी की जय, गुरुदेव की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माता पिता
0: गुरुदेव की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति शांति शांति, हरिओम।
0: जय की जय।

श्री देव नर भगवान की जय। श्री श्री मारवा नाथ जी भगवान की जय। श्री देव नर भगवान की जय।

ओम श्री नरेन भगवान की जय। श्री देवपुरीषा महादेव की जय। श्री विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमस्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

0: ओम श्री नरेन्द्र भगवान
1: की जय।
0: श्री मांगीलाल जी
1: की जय।
2: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्रीमद कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु मंदिर श्री स्वामी जनंद गुरुदेव की जय। श्री हरपुरी जी भगवान की जय।

0: श्री दीपनारायण भगवान की जय।
1: श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेव की जय। नरम समरथ स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय।

नारायण भगवान की जय। श्री आलकपुरी जी सीधा पीत परंपरा की जय। श्री आदरपुरी जी महाराज की जय। हीरापुरी जी।

0: श्रीदीप नरम भगवान की जय।
1: श्रीदीप नरम भगवान की जय।
0: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव।